के पास तो मैं zombie man, करता मैं sense मांगू माफी नहीं, straight out of hell तोड़े पाप मेरे रगों में, god level threat मैं डालू ना इंसानों से मेडूसा से zombie, I'll be harder than your luck, I don't need a crew, काफी है ये single punch, burst open pen और machine gun blow, devilish slow, I got M34, 666 path और हाथ मेरे लाल, होता upgrade rose जैसे